कृष्णकांत नांदगावकर की भक्ति रचना भी आपने सुनी गीता दाता के स्वर में, जिसके संगीतकार थे विजय पवार। कार्यक्रम में आइए अब वीणा भक्ति मंडल द्वारा प्रस्तुत ये भक्ति रचना सुनते हैं।

वीणा भक्ति मंडल द्वारा प्रस्तुत ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की भक्तजना अभी आपने सुनी श्रीकांत पारगावकर के स्वर में। कार्यक्रम की अगली हिंदी भक्ति रचना है संत मीराबाई की, आइए समूह स्वर में सुनते हैं।

अभी आपने संत मीराबाई की भक्ति रचना समूह स्वर में सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं वसंत खरे के स्वर में संत कामपात्रा की ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग अहिर भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं पंडित तुषार दत्तो. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुमंत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी. तो आइए सुनते हैं राग अहिर भैरव में ख्याल, कलाकार पंडित तुषार दत्तो.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. लिसन टू अ ख्याल इन राग अहिर भैरव by our artist Pandit Tushar Datta. He is accompanied on the tabla by Sumanta Chattopadhyay and on the harmonium by Devashish Adhikari. Now, listen to a khayal rendition in Raag Ahir Bhairab by our artist Pandit Tushar Datta.

0: रहे थे। आज कलाकार थे पंडित तुषार दत्तो, आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुमंत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए आप सुनते हैं राग अहीर भैरव में सितार वादन। आज के कलाकार हैं अंजन साहा, आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है सितार पर राग अहीर भैरव, कलाकार अंजन साहा।
1: You are listening to a khayal rendition in Raag Ahir Bhairab by our artist Pandit Tushar Datta. He was accompanied on the tabla by Sumant Chattopadhyay and on the harmonium by Devashish Adhikari. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now listen to a sitar recital of Raag Ahir Bhairab by our next artist Anjan Saha. The accompanying artist is Tarun Roy on the tabla. Now, listen to a sitar recital of Raag Ahir Bhairab by our artist Anjan Saha.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय।
1: ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
2: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल ऑफ राग आहिर भैरव by our artist Anjan Saha. Accompanying artist was Tarun Roy on the tabla. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं मिलिंद तुरानकर का जल तरंग वादन, राग मालकंस।

श्रोताओं, अभी अपने मिलिंद तुरानकर का जलतरंग वादन सुना। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं फैयाज हुसैन ने वायलिन पर बजाया राग अभोगी।

अभी आपने फैयाज हुसैन ने वायलिन पर बजाया राग अभोगी सुना। आइए सुनते हैं फैयाज हुसैन का वायलिन पर बजाई पीलू धुन।

अभी आपने फैयाज हुसैन का वायलिन वादन सुना। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरव में आलाप और दूड़. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now bring you a sitar recital by Gulam Dastagir Khan. He begins his recital with an alap and jod in rag bhairav. The vilambit and drutgat are set to teen taal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak.

0: अभी आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: You just heard a Rendnan rag Bhairav on the sitar by Ghulam Dastagir Khan. He now presents rag Shuddh Sarang. The Vilambit and Drutgat are set to Teen Tal.

0: अभी आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: जस्ट हर्ड राग शुद्ध सारंग परफॉर्म्ड बाय गुलाम दस्तगीर खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Is that it?

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, यह है रागम 24/7 DTH चैनल पर हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शहनाई वादन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मधुकर गोळवलकर के तार शहनाई वादन से। आपने प्रस्तुत किया है राग भटियार। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं माणिकराव पोपटकर। सुनते हैं मधुकर गोळवलकर का तार शहनाई वादन राग भटियार।

श्रोताओं हम सुन रहे थे मधुकर गोरवलकर का तार शहनाई पर बजाया हुआ राग भटियार। आपके साथ तबले पर थे माणिक राव पोपटकर। आइए अब सुनते हैं मधुकर गोरवलकर का तार शहनाई पर बजाया हुआ राग नटभैरव, ताल एक ताल। आपके साथ तबले पर है चंद्रकांत कामत। सुनते हैं तार शहनाई पर राग नटभैरव, कलाकार मधुकर गोरवलकर।

श्रोताओं, शहनाई वादन के कार्यक्रम में हम सुन रहे थे मधुकर गोळवलकर की तार शहनाई पर बजाई हुई धुन। तबले पर थे चंद्रकांत कामत। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिती थी। रागम 2400 घंटे डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत।

0: पर तनुश्री चटर्जी का सरोद वादन सुन रहे थे। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। यह है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in the rag Chinchoti. Our artist was Tanushree Chatterjee. Accompanying our artist on the

0: आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। एस सुप्रदीप एक प्रतिभाशाली एवं सिद्धहस्त बांसुरी वादक हैं और संगीत की एक प्रतिष्ठित परंपरा से जुड़े परिवार से आते हैं। आप सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक एस ए शशिधर के सुपुत्र एवं शिष्य हैं। आपने अपने पिता के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत की बारीकियों और समृद्ध संगीत परंपरा को आत्मसात किया है। सुप्रदीप ने छोटी उम्र से ही संगीत के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है। आपने राज्य स्तरीय जूनियर और सीनियर संगीत परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं और दोनों में रैंक प्राप्त की है। आपकी संगीत प्रतिभा और संभावनाओं को सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियों के माध्यम से भी मान्यता मिली है। आप आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी कला प्रस्तुति के माध्यम से आपने विविध श्रोताओं तक शास्त्रीय संगीत पहुंचाने तथा उसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। आपकी कला यात्रा भारत तक ही सीमित नहीं है, आपने अपने पिता के साथ विदेशों की संगीत यात्राओं में भाग लिया है जहां आपने बांसुरी की युगल प्रस्तुति दी। प्रसारण और डिजिटल माध्यमों में भी सुप्रदीप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। यस सुप्रदीप इज अ टैलेंटेड एंड एकम्प्लिश्ड फ्लूटिस्ट who belongs to a distinguished family of musicians. He is the son and disciple of renowned flautist S. A. Shashidhar and has imbibed the nuances of classical music through the rich tradition and guidance of his father. Supradeep has demonstrated his dedication and commitment to music from an early age. He successfully completed the state junior and senior music examinations, securing ranks in both. His musical talent and promise have been recognized through prestigious scholarships from the Center for Cultural Resources and Training and the Ministry of Human Resource Development. He is an A-grade artist of Akashwani Bengaluru. Through his musical performances, he has reached diverse audiences and contributed to the promotion and propagation of Indian classical music. His artistic journey extends beyond the Indian stage. Supradeep has accompanied his father on musical tours to the abroad where they presented flute duet concerts. Supradeep has also made his presence felt in the broadcast and digital space.
0: Aaj ki is prastuti mein aapke saath sangat kar rahe hain violin par G. Venkatesh Joshier, mridangam par K. V. Ravishankar Sharma aur morsing par Likhit K.M.
1: In tonight's performance, he is accompanied on violin by G. Venkatesh Joshier, on mridangam by K.V. Ravishankar Sharma and on morsing Likhit K.M.
0: S. Supradeep apne basuri vadan ka aarambh Vallabha Nayakasya se kar rahe hain. Yeh Muthuswami Dikshitar ki sundar rachna hai, jo raag Veghade aur Rupak Taal mein nibaddh hai.
1: Yes, Supradeep begins his flute recital with Vallabha Nayakasya, a beautiful composition of Muthuswami Dikshitar, set in Raga Begade and Rupaka Tala.

0: अगली प्रस्तुति है मरीवेरे दिक्केवरु। यह पठनम सुब्रमण्य अय्यर की लोकप्रिय रचना है, जिसे राग लतांगी और खंड चापुताल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज मरीवेरे दिक्केवरु, अ पॉपुलर कॉम्पोजिशन ऑफ पठनम सुब्रमण्य अय्यर, सेट इन राग लतांगी एंड खंड चापुताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोर सिंह पर लिखित केएम। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए एस सुप्रदीप अब प्रस्तुत कर रहे हैं रा रा राजीव लोचना। यह मैसूर वासुदेवाचार्य की मधुर रचना है जो राग मोहनम और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, ऑन मृदंगम केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोर सिंह लिखित केएम। कंटिन्यूइंग हिज परफॉर्मेंस यस सुप्रदीप नाउ प्रेजेंट्स रा रा राजीव लोचना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य, सेट इन राग मोहना एंड आदिताला।

0: अभी आपने तनी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मूर सिंह पर लिखित केएम ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tani Avartanam presented on Mridangam by K.V. Ravishankar Sharma and on Morsing by Likhit K.M.
0: S. Supradeep अपने बांसुरी वादन का समापन कन्नड़ भक्ति रचना तंबूरी मीठी दवा से कर रहे हैं। यह महान संत कवि पुरंदर दास की रचना है और राग सिंधु भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: S. Supradeep concludes his flute recital with the timeless Kannada devotional composition Tamburi Meeti Dava, composed by the great saint poet Purandara Dasa, set in Raga Sindhu Bhairavi and Aditala.

0: बेंगलुरु का योगदान था जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया.
1: इंदिर रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा. यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप. ही वाज एकॉम्पनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम बाय केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंग लिखित केएम. This program is a contribution of Akashvani Bengaluru, brought to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Ashutosh Mishra.

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे थे एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंह पर लिखित के एम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित गोपाल शंकर मिश्र. राग है यमनी बिलावल. इसमें आपने आलाप जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत की हैं जो क्रमशः रूपक एवं तीन ताल में निबद्ध हैं. आपके साथ तबले पर संगत की है उस्ताद इस्माइल दद्दू खान ने. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग यमनी बिलावल इन विच ही रेंडर्स टू कंपोजिशन सेट टू विलंबित रूपक ताल एंड ध्रुतगत इन तीन ताल. द एकम्पेनिंग आर्टिस्ट इज उस्ताद इस्माइल दद्दू खान ऑन द तबला.

अभी आप सुन रहे थे राग यमनी बिलावल। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यह है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग जयंत मल्हार। विलंबित तथा द्रुत दोनों गतें 3 ताल में निबद्ध हैं। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग जयंत मल्हार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में राग जयंत मल्हार। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। तबले के साथ संगत कर रहे थे पंडित यदुनंदन गोस्वामी। हर पल हर समय DTH रागम के लिए ये थी आकाशवाणी भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग नट भैरव. विलंबित एवं द्रुत दोनों बंदिशे तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सरोद रिसाइटल बाय अभिजीत राय चौधरी. ही इज प्रेजेंटिंग राग नट भैरव. बोथ द विलंबित एंड द्रुत बंदिश आर बेस्ड ऑन तीन ताल. अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट.

ये है रागम 24 घंटे सातुदीन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरुद पर आगनट भैरव। आइए अब सुनते हैं उन्हीं का बजाया सरुद पर राग चारुकेशी। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

अभी आप सुन रहे थे सरोद पर बजाया राग चारू केशी। वादक कलाकार थे अभिजीत राज चौधरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। नाउ यू आर लिसनिंग श्री अभिजीत राय चौधरी इन सरोद। ही वॉज प्लेइंग राग चारू केशी। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग मिश्र भैरवी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। तो कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग सरोद बाय अभिजीत राय चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: रागम चैनल है। प्रस्तुत है उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग गुनकली। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं रहीम नाम तेरो, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं ऐ करतार। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने।
1: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल बाय उस्ताद मजहर अली खां एंड उस्ताद जवाद अली खां। दे बिगिन देयर रिसाइटल विद अ रेंडिशन इन राग गुनकली। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल एंड द वर्ड्स आर रहीम नाम तेरो। द द्रुत ख्याल इज सेट टू तीन ताल एंड द वर्ड्स आर ऐ करतार। दे आर अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक, ऑन द सारंगी बाय दिलशाद अहमद एंड ऑन द हारमोनियम बाय जमीर अहमद।

0: अभी आप उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग गुनकली सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगत की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं अब मोरी राम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने।
1: यू जस्ट हर्ड उस्ताद मजहर अली खां एंड उस्ताद जवाद अली खां परफॉर्मिंग राग गुनकली। दे वर अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक, ऑन द सारंगी बाय दिलशाद अहमद एंड ऑन द हारमोनियम बाय जमीर अहमद। उस्ताद मजहर अली खां एंड उस्ताद जवाद अली खां विल नाउ परफॉर्म राग तोड़ी। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल एंड द वर्ड्स आर अब मोरी राम। द द्रुत ख्याल इज सेट टू तीन ताल। द अकंपनिस्ट आर विनोद पाठक ऑन द तबला, दिलशाद अहमद ऑन द सारंगी एंड जमीर अहमद ऑन द हारमोनियम।

0: अभी आप उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड अ वोकल रेंडिशन इन राग तोड़ी बाय उस्ताद मजहर अली खां एंड उस्ताद जवाद अली खां। दे वर अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक, ऑन द सारंगी बाय दिलशाद अहमद एंड ऑन द हारमोनियम बाय जमीर अहमद। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

दी आँख कुलकर्णी की रचना आप सुन रहे थे श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। संगीतकार थे राम कदम। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना। कार्यक्रम की अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है बबनराव नावडीकर ने।

आप सुन रहे थे बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है कीर्ति शिलेदार ने।

श्रोताओं, अभी आपने कीर्ति शिलेदार के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना सुनी। अब सुनिए संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना विठ्ठल शिंदे के स्वर में।

विट्ठल शिंदे के स्वर में आप सुन रहे थे संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए नुरवा राय की रचना माणिक वर्मा के स्वर में।